रहाओ। अदृष्टि अगोचर पार ब्रह्म मिल साधु अकत कथाया था, अनहद शब्द दसम द्वार बजियो ते अमृत नाम चुवाया था। तोट नाही मंत्र सना बुझी अखुट भंडार समाया था, चरण चरण चरण गुरु सेवे अखड़ घड़ियो रस पाया था। सहजे आवा सहजे जावा सहजे मन खेलाया था, कहो नानक परम गुरु खोया ता हर महली महल पाया था। मारू महला पंजवा जिसे साज निवाजिया तिसे स्यो अरुचना।

नाथ जगत पित माया प्रभ दयाल दुख दर्द विदारण जिस भावे तिस ही निस्तारण अंधकूप ते काढ़ नहारा प्रेम भगत होवत निस्तारा साध रूप अपना तन धारिया मां अगंते आप उबारिया जप तप संजम इस ते किछ नाही आद अंत प्रभ अगं

जम को डंड परियो सरी ऊपर तब सोवत तय जागियो कहा होत अब कह पछताए छूटत नाहिन भागियो। यह चिंता।

साहिब जी हर जुग जुग भक्त पाया ऐज रखदा आया राम राजे हर नाकश दुष्टर मारिया प्रहला तराया अहंकारियां निनका पिट दे नाम दे मुख लाया जन नानकै सार सेविया अंतले छाया श्लोक महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्लोक महला पहला दुख दारू सुख रोग प्या जा सुख ताम न हुई तू करता करना मैं नहीं जाऊं करी न हुई बलिहारी कुदरत वसया तेरा अंत न जाए लखिया रहाओ जात में जोत जोत में जाता कलकला भरपूर हा तू सच्चा साहेब सिफत सवाल्यो जन कीती सो पार पया कहो नानक करते किया बातां जो किश करना सो कर रहा सोदर राग आसा महला पहला

गावन तुदनो सिद्ध समाधि अंदर गावन तुदनो साधु विचारे गावन तुदनो जति सती संतोखी गावन तुदनो वीर करारे गावन तुदनो पंडित पढ़न रखी सर जुग जुग वेदा नाले गावन तुदनो मोहनिया मन मोहन सुरग मच प्याले

सो क्यों विसरे मेरी माए, साचा साहिब साचे नाए रहो, साचे नाम की तिल बड़े आई, आख थके कीमत नहीं पाई।

राग गुजरी मानला चौथा हर के जन सतगुर सतपुरखा बिनो करो गुरपास हम कीरे किरम सतगुर शरण।

जो सतगुर शरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन तुर

हार त्यावो संतो जी सब दुख सारण हारा। हरे आपे ठाकर हरे आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा।

सबसे कजन होई आसा महला पंजवा आसा महला चौथा तू करता सच्यार मेंडा साईं।

नमस्कार तिसी को हमारी सकल प्रजा जने आप सुवारी शिवकन को सब गुण सुख दियो शत्रन को बल मोहबद कियो कट कट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर स्थूला सब पर कृपा दृश कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने कट कट के पट पट की जाने जाबुद करक करा करतारा प्रजा धरत दब दे अपारा जाबिया करख करत हो कबहू

सगरी सृष्टि दिखाए अचंभव जुगाद स्वरूप स्वंभव अमृषा मेरी तुम करो सिख वार सिख संगरो।

पई। संबंद सत्रह सहज पणिजय अर्ध सहज फुन तीन कहिजय भाद्रो सुधी अष्टमे रविवार तीर्थ तद्रव ग्रंथ सुधारा एत श्री चरित्रोपख्याने त्रिया चरित्र मंत्री पू संबंध

व्याद्याश वह सके न कोई। सम्मत सत्रह सहस पण जय अध सहस पण तीन कहे जय। सम्मत सत्रह सहस पचावन हाड़ बदी प्रथम सुख दावन। त्वय प्रसाद कर ग्रंथ सुधारा भूल परी लो लो सुधारा दोहरा। नेत्र तुमके चरण तर सद्रव तीर्थ रंग। श्री भगवत पूर्ण कियो रघुवर कथा प्रसंग।

अंतर गुरु आराधना जेवा जप गुरनाओ नेत्री सतगुर पेखना सरवणी सुनना गुरनाओ सतगुर सेती रत्या दरगे पाये ठाओ कौ नानक कृपा करे जिसनु ए वत दे।

संग पावजल तारियन साकत निंदक दुष्ट खिन माय विदारियन तिस साहिब की टेक नानक मने माहे जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाहे तिस साहिब की टेक नानक मने माहे जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाए। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।

ऐसा संगत सतगुरानी बख्शिश रहमत का सदका रहरा साहब के पाठ सरवण किए ने सतगुरु मेहर करन आई संगत की हाजरी दर प्रवान करन दरों गुरु नाम की दात गुरसिखी जीवन बख्शन सो आओ शाम के दीवाना की शुरुआत करिए सतगुरु कृपा करन बख्शिश करन जो प्रोग्राम चल रहे ने जिस तरह आप सारे जानते हो छे अखंड पाठ प्रकाश ने जिन्हां दे भोग सवेरे 9 बजे शुरू हो जाने ने सो बेनती है सारे ही माए भाई दे चरणां च पई आओ उस महान गुरु दे चरणां च बैठ करके गुरु का जस सरवण करिए सारा दिन दीवान सजेगा सवेरे अमृत वेले तो लैके सो बेनती है जिन्हां जिन्हां माई भाई दे कोल टाइम है जरूर कढ़िया करो ये भागां नाल मिलता है जिन्हां दे वड्डे भाग ने उन्हां नूं गुरु की संगत मिलती है महापुरख बचन करिया करदे सन भाई भाग जागे जिहदे भाग जागदे ने उस नूं गुरु की संगत प्राप्त हुंदी है सो आओ गुरु की संगत में बैठ करके गुरु का जस सरवण करिए सवेरे समय सिर पहुँच करके गुरु के चरणों में हाजरी भरीए गुरु की खुशियां प्राप्त करिए आओ हुण कीर्तन सरवण करिए जी भाई साहब भाई गुरप्रीत सिंह जी हेड ग्रंथी साहब वो आप जी ने सरवण करवाएंगे वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह

सेवा प्रवान करनी जी कीर्तन कर दिया बुला दी माफी बख्शन भाई कुलदीप सिंह जी दमदिन टकसाल वाले आप जी ने कथा राही जोड़नगे उन्होंने पास सुप्यार का सरवण करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

कीर्तन की समाप्ति है। गुरु अर्जन सच सिरजन हारा रब सस किरण उदोत लंघ। भाई गुरदास जी उन्हां दे बारे बयान करदे ने, दो ही वारा मिलदियां ने उन्हां दियां लिखतां दे विच। एक गुरु अर्जन विटों कुरबाणी रहिंदे गुरदरियाओ विच, मीन कुलीन हेत निर्बाणी दर्शन देख पतंग ज्यों ज्योति अंदर जोत समाणी। तो गुरु अर्जन देव महाराज जी ने यह सतगुरु का भाणा मिठा करके मनिया और उन्होंने जबान चो सी भी नहीं निकली, हाए भी नहीं निकली। कहते हैं कि जो जीसस नूं शहीद किया गया, क्रिश्चियनिटी दी डिवेलपमेंट का इन्ना कारण जिहड़ा है वह शहादत है, क्राइस्ट की शहीदी उहदा रीजन है। जदों उन्हूं क्रूसीफाई किया तो मेखां ठोकियां, दिल ठोके गए तो उन्हें अरदास की परमात्मा के चरणों च कि इस पीड़ा नूं, इस दुख नूं ए गॉड मेरे तो मैनू इस तो बचाओ। इस पीड़ा तो उस बाद उन्होंने शहीदी होंदी है, पर दर्द तो पीड़ा तो कोई भी मुश्किल हालात जदों बन जदों शहीदी का ये मसला बनता है, ये प्रीख्या होंदी है, बड़े बड़े डर जाते हैं, बड़े बड़े त्रह जाते हैं। पर गुरु अर्जन देव महाराज ने जो ये निशान छड़िया है पृथ्वी के उत्ते, सारे संसार दे विच इहदा डंका जिहड़ा सारी उम्र रहिंदी दुनिया तक ये वजदा रहेगा, क्योंकि आप ही आप नारायण कला धार जग मह परिवरे हो और गुरु नानक की ज्योति गुरु अर्जन दे विच विराजमान बैठी हुई, क्योंकि काया जिहड़ी पलट जांदी ज्योति उही रहिंदी है ना, उही उही गुरु नानक गुरु अर्जन के रूप के बैठे ने। आप निरंकार रूप होके गुरु अर्जन प्रतख हर और गुरु अर्जन जिधर देखते ने सारे दे कोट कोड़ा करोड़ा पाप जड़े ने, दुख जड़े ने वो मिट जाते हैं। तो ऐसे गुरु नू बर्दाश्त करना हुकूमत लई थोड़ा मुश्किल होंदा है, तो बड़े रीजन जड़े ने उन्हां दी शहीदी दे। बाणी दे विच भी कहिंदे ने कि चार लेखक उस टाइम आए सन, काना छजू ते पीलू, ये भी चाहते सन कि साड़ी बाणी जिहड़ी है श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे विच दर्ज जिहड़ी कर दित्ती जाए। तो गुरु ने बाणी सुनी तो उत्ते लिखिया सी मैं ओही ओही रे, मैं ओही रे, मैं ओही रे। महाराज कहिंदे ते हंकार दी किरत है, इहदे विच निरंकार दा पैगाम है। ये जो तुरकी बाणी है ये परमात्मा दी गल है। तुसीं हजरत मुहम्मद साहब की कोई तारीफ लिख दिओ, कहिंदे किसी बंदे विशेष की असीं कोई तारीफ नहीं लिखनी, मुसलमाना बारे गल की गई है श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे विच, मुसलमान मोमदिल हो गए। तो ये पैगाम ये संदेशा जिहड़ा ये परम उस जोत उस रब का संदेशा है जो धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने तरस करके साड़ी झोली पाया, और कीर्तन की दात भी जिहड़ी ने ये भी गुरु अर्जन देव महाराज जी की सानू देन है, जो अज कीर्तन करन असी लायक होए हाँ। इहदे दाते जिहड़े ने धन गुरु अर्जन देव महाराज जी, तो आप जी कुरबाणी तिना गुरसिखां भाए भगत गुरपुरब करन दे तुसीं मना रहे हो। सतगुरु सच्चे पातशाह कृपा रखे, उन्हां दे बचन साडे हिरदे च वसन ते साडा जन्म जिहड़ा है सफल हो सके। राम कली महला तीजा आनंद क्यों का, सतगुर प्रसाद आनंद।

सोरठ महला पंजवा गुर का शब्द रखवारे चौकी चौगिर्द हमारे राम नाम मन लागा जम लजाए कर पागा।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु

हर मन माने वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। टोडी महला पंजवा घर पहला दुप दे एक ओंकार सतगुर प्रसाद संतन अवर ना काहू जानी वे परवाह सदा रंग हर कै।

मिशन पद गावे गुंग जतन करे तो भी सुरभंग कै पिंगल पर्वत पर भवन नहीं हो तो आस गवन करतार करना मैं दीन बेनती करे नानक तुमरी कृपा तेरे संसा सुहाविन चीत जो बैराए तसो प्रीत बलुआ के ग्रह भीतर वसे अंध खेल माया रंग रसे।

ठाकर तुम पे अरदास जीव पिंड सब तेरी राज तुम मात पिता हम बारक तेरे तुमरी कृपा में सुख नेरे कोई न जाने तुमरा अंत उच्चे ते उच्चा भगवंत।

मिथ्या तन तन कुटुंब सबाया मिथ्या हम मे ममता माया मिथ्या राज जोवन तन माल मिथ्या काम क्रोध विकराल मिथ्या रथ हस्ती असवस्त्रा मिथ्या रंग संग माया पेगस्ता मिथ्या त्रो मोह अपमान मिथ्या आपस ऊपर करत कुमान अस्थिर भगत साध की शरण नानक जब जब जीवे हर के चरण मिथ्या सर्वन परनिंदा सुनह मिथ्या स्त पर दर को रह

सोए, जो जो कहे सुमुक्ता होए। सुन मीता नानक बिनवंता साजना की आचर्ज कथाशपरी, साध के संग मुख उजल होत, साध संग मल सगली खोत, साध के संग मिटे अभिमान, साध के संग प्रटे सो ज्ञान, साध के संग बुझे परम नेरा, साध संग सब होत नवेरा, साध के संग पाए नाम रतन, साध के संग एक ऊपर जतन, साध की महिमा बढ़ने कौन प्राणी, नानक साध की शोभा ब्रह्मा समानी, साध के संग गोचर मिले, साध के संग सदा प्रफुल्ले, साध के संग आवे बस पंचा, साध संग अमृत रस पुंचा, साध संग हुए सब की रेन, साध के संग मनोहर बैन, साध के संग न कतू धावे, साध संग हस्तित मन पावे, साध के संग माया ते पैन, नानक साध संग प्रभ सो प्रसन्न, साध संग दुश्मन सब मीत, साधु कै संग महापुनीत, साध संग कस्यो नहीं बहर, साध के संग न बिगा पैर, साध के संग ना ही को मंदा, साध संग जाने परमानंदा, साध के संग ना ही होता, साध के संग तजे सब आप

साधु के संग अजर सह साध के संग बसे थान उचे साधु के संग महल पहुंचे साध के संग दृढ़े सब धर्म साध के संग केवल पार ब्रह्म साध के संग पाए नाम निदान नानक साधु कह कुरबान साध के संग सब को लो धारे साध संग साज नीर कुटम निस्तारे साधु कह संग सोतन पावे जिस तंते सब को बरसावे साध संग धर्म राय करे सेवा साध के संग सुभा सुरदेवा साधु कह संग पाप पलायन साध संग अमृत गुण गायन

साध के संग कलूक तारे साध के संग नरक पर हरे साध के संग इहां वहां सोहेला साध संग विचर तर मेला जो इच्छे सोई फल पावे साध के संग नमृता जावे पार ब्रह्म साध रत बसे नानक उदरे साध सुन रसे साध के संग सुनो हर नाओ साध संग हर के गुण गाओ साध संग नमते बिसरे साध संग सरपर निस्तरे साध संग लगे प्रमीठा साधु के संग कट कट डीठा साध संग पे आज्ञाकारी साध संग गत पे हमारी साध के संग मिटे सब रोग नानु साध पेटे संजोग साध की महिमा भेद न जाने जेता सुने देता वखियाने साध की उपमा ते गुण ते दूर साध की उपमा रही भरपूर साध की शोभा का नहीं अंत साध की शोभा सदा बेअंत साध की शोभा ऊचते ऊंची साध की शोभा मूचते मूची साध की शोभा साध बाने आई नानक साध प्रभ भेद ना पाई श्लोक मन साचा मुख साचा सोए अवर न पेखे किस बिन कोई।

भाव का सहज स्वभाव। ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला, जैसे मैल न लागे जला। ब्रह्म ज्ञानी कै मन होय प्रकाश, जैसे तारे उपरे आकाश। ब्रह्म ज्ञानी कै मित्र सतर समान, ब्रह्म ज्ञानी कै नाय मान।

ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का धनी। श्लोक उरदारे जो अंतर नाम सर्व मैं पिखे भगवान, निमख निमख ठाकर नमस्कारे, नानक ओ अपरस सगल निस्तारे। अष्टपदी मिथ्या नाही रसना परस मन में, प्रीत नंजन दर्श बरदरिया, रूप न पेख नेतर सादगी टैल संत संगेत, कर्ण ना सुने काउ की निंदा, सब ते जाने आपस को मंदा।

मंत्र सर्व को ज्ञान। चौं वर्णा में जपे को नाम, जो जो जपे तिसकी गत होए, सार संग पावे जन को कर कृपा, अंतर उधारे पस प्रेत मुक्त पात्र को तारे।

श्लोक मुस्त करे अनेक जाने अंत न पारावार नानक रचना प्रवरचे बहुविधे अंग प्रकार अष्टपदी कई कोड़ होए पुजारी कई कोड़ चार व्यवहारी कई कोड़ पै तीर्थवासी कई कोड़ वन पर मैं उदासी कई कोड़ वेद के स्रोते कई कोड़ तबीजरोते कई कोड़ आत्म ध्यान धार है कई कोड़ कवका विचारे कई कोड़ नवतन नाम ते आवे नानक करते का अंत न पावे कई कोड़ पै अभमानी कई कोड़ अंध ज्ञानी कई कोड़ किरपन कठोर कई कोड़ पैग आत्म निकोर कई कोड़ पर दर्व को हिरे कई कोड़ पर दुख न कहे कई कोड़ माया शरमाए कई कोड़ पर देश परमाए जिज लाभ तित लगना नानक करते की जाने करता रचना कई कोड़ सिद्ध जति जोगी कई कोड़ राजे रस भोगी कई कोड़ पंखी सर्प उपाय कई कोड़ पात्र बिरख निपजाए कई कोड़ पौन पानी बैसंतर कई कोड़ देश भूमंडल कई कोड़ सचियर सूर्ण खतर कई कोड़ देवदान मिंद्र सिर छतर सर्व समग्री अपने सूत धारे नान जिस जिस भावे तिस तिस निस्तारे कई कोड़ राज तम सातक कई कोड़ वेद प्राण सिमर तेरा शास्त्र कई कोड़ किए रतन समान कई कोड़ नाना प्रकार जंत कई कोड़ किए चिरजीवे कई कोड़ गिरी मेर स्वर्ण थीवे कई कोड़ जाके नरसाज कई कोड़ भूत प्रे सुकर मिनगाज सब ते नेरे सबों ते दूर नानक आवलिप्त रहा भरपूर कई कोड़ पताल के वासी कई कोड़ नरक स्वर्ग निवासी कई कोड़ जन्मे जीवे मरे कई कोड़ बहु जोनी फिरे कई कोड़ बैठती खाए कई कोड़ काले तक पाए

प्रसाद नानक सच कह कबो पंडित कर व्याख्यान कबो मोन धारी लावे ध्यान कबो तट तीर्थ स्नान कबो सत साधु ज्ञान।

से पारम कह संग ज्यों जल में जल आए कटाना त्यों ज्योति संग जो सुमाना मिटके गवन पाए विश्राम नान प्रकै सतगुरवान श्लोक करन सुखी वसे मस्कीनिया।

पाछे पावे अनक भोम क्या के करे नंद तावे कमरे बिना संतोख नहीं को राजे सुमन मनोहर बिरते सब काजे नाम रंग सर सुख होए बड़ भागी किसे प्राप्त होए कर्ण करावने आपे आप सदा नानक कर जाप।

एक आपे एक आपे अनेक मरे ना मिनसे आवे ना जाए नान सदी रे असमाए आप उपदेश समझे आप आपे रचया सबके साथ आप किनो अपन विस्तार सबके सुसगाओ करने आर उसते पहन कहो कि जो ए थान तनंतर कैसो ए अपने चलते आप करने आर को तो करे रंग पार मन में आप मने अपने माए नानक कीमत कहन जाए सत सत सत प्रभ स्वामी गुर प्रसाद किने वेख्या नी सच सच सत सब कीना कोण मदे किन बिरले चीना भला भला भला तिर रूप अत सुंदर अपार अनु निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी कर कर सुनी सर्व मुखियाणी पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत नाम जपे नानक मन प्रीत

Maharaj Parim. संत के दुखन आर जा कटे, संत के दुखन जमते नहीं छुटे, संत के दुखन सुख साव जाए, संत के दुखन नरक में पाए, संत के दुखन मत होए मलीन, संत के दुखन सो बाते हीन, संत के हते को रखे न कोए, संत के दुखन थान पृष्ठ होए, संत कृपाल कृपा जे करे, नानक संत संग निंदक भी तरे, संत के दुखन ते मुख पवे, संतन के दुखन काग जन लवे, संतन के दुखन सर्प जोन पाए, संत के दुखन त्रिक जोन क्रमाए, संतन के दुखन तृष्णा में जले, संत के दुखन सबको चले, संत के दुखन तेज सब जाए, संत के दुखन नीच नीच आए, संत दुखी का था को नाए, नान संत पावे ता होए भी गत पाए, संत का निंदक माताए, संत का निंदक खंटक न पाए, संत का निंदक मां त्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा, संत का निंदक राजतेहीन, संत का निंदक दुखियार दीन, संत के निंदक को सर्व रोग, संत के निंदक को सदा विजोग, संत की निंदा दोख में दोग, नान संत पावे ता उसका भी होए मोख, संत का दुखी सदा पवित्र, संत का दुखी किसे का निमित्त, संत के दुखी को डान लागे, संत के दुखी को सब त्यागे, संत का दुखी महंकारी, संत का दुखी सदा विकारी, संत का दुखी जन्मे मरे, संत की दुख न सुखते डरे, संत के दुखी को नाई ठाओ, नान संत पावे ता ले मिलाए, संत का दुखी अद बीज ते टूटे, संत का दुखी किते काज ना पहुंचे, संत के दुखी को ध्यान परमाई है, संत का दुखी अवजड़ पाई है,

संत का दुखी यम बिल लाए जो जल भून मछली त्रिभुराए संत का दुखी भूखा ने राजा जो पाव के तन नहीं त्रापे संत का दुखी छुटे अकेला जो बाड़ तिल खेत माए दुहेला संत का दुखी धर्म ते रहत संत का दुखी सदमथिया कहत किरत निंद का तुर ही पया नान जो तिस भावे सोई थे संत का दुखी बिगड़ रूप जाए संत के दुखी को दर गए मिले सजाए संत का दुखी सदा सहकाई है संत का दुखी ना मरे ना जिवाई है संत के दुखी के पूजन आसा संत का दुखी उड़ चले नरसा संत के दुख न दिष्टे कोए जैसा पावे तैसा कोई होए पया कीर्तन मेटे कोए नान जाने सच्चा सोए साव कर तिसके ओ करने हार सा तिसको नमस्कार प्रभु की उस्तत करो दिन रात त्यावो सास खराज सब किस वरते तिसका किया जैसा करे तैसा को थिया आपना खेलिया करने हार दूसर कौन कहे विचार जिसनों

जा के संग तरे संसार। जनका सेव सोवड़ भागी जनके संग एक लिव लागी, गुण गोविंद कीर्तन जन गावे गुरु प्रसाद नानक फल पावे। श्लोक आद सच जुगाद सच है बै सच, नानक होसी पै सच। आष्टपदी चरण सत सत प्रसनहार, पूजा सत सत सेवदार, दर्शन सत सत पेखनहार, नाम सत सत त्यावनहार। आप सत सत सबधारी आपे गुण आपे गुणकारी, शब्द सत सत प्रभ भक्ता सुरत सत सत जय सुनता भूजनहार, को सत सब होए नानक सत सत प्रभ सोए।

सर्वजन सर्व दुख का दाता, तिसकी सरण सर्व सुख पावे, तिसके सब पाप मिटावे। अवर सियान बसगली शाड़, तिस जन की तू सेवा लाग, आवन जान न होवी तेरा नानक, तिस जन के पूजो सद पैरा। श्लोक सत पुरख जिन जानिया, सतगुर तिसका नाओ, तिसके संग सिख उदरे, नानक हर गुण गाओ। अष्टपदी सतगुर सिक्की करे बिरधपाल, सेवको गुरु सदा दयाल, सिक्की गुर दुरमत मल हिरे, गुरु वचने हर नाम उचरे, सतगुर सिक्के बंधन काटे, गुर का सिख विकार ते हटे। सतगुर सिको नाम तन दे, गुर का सिख बड़भागी है, सतगुर सिक्का हल्द पल्द सवारे, नान सतगुर सिको जी नाल समारे, गुर के ग्रह सेवक जो रहे, गुर की आज्ञा मन में सहे, आपस को करकश नान जनावे, हर हर नाम हृदय सत्यावे। मन बेचे सतगुर के पास, ते सेवक के कार्य रा, सेवा करत होए ने कामी, तिसको उद प्राप्त स्वामी, अपनी कृपा जिस आप करे, नानक सो सेवक गुर की मत ले, बीस विश्व गुर का वन माने, सो सेवक परमेश्वर की गत जाने, सो सतगुर जिस हृदय हर नाओ, अनक बार गुर को बल जाओ, सर्व निधान जी का दाता, आठ पहर पार ब्रह्म रंग राता। ब्रह्म में जन जन में पार ब्रह्म एक, आप नहीं किस परम, सह सियाण भलिया न जाइए, नानक ऐसा गुरु भागी पाइए। सफल दर्शन पेखत पुनीत, परसत चरण गात निर्मल रीत, भेट संग्राम गुण रवे, पार ब्रह्म की दरगह गवे, सुनकर भजन करन गाने, मन संतोखा दंपतिया ने, पूरा गुरे आख्यो जागा मंत्र, अमृत पेख से पेखे हुए संत, गुण बेअंत कीमत नहीं पाए, नानक जिस पावे तिस लय मिलाए, जे वाए कुस्त नेक, सतपुरख पूर्ण विवेक, काहू बोल न पोचित प्राणी, गम गोचर परम निर्वाणी, निराह निर्वैर सुखदाई, ताकी कीमत किन न पाई, अनक भगत बंधन नित करे, जन कमल हृदय सिमरे, सत बलिहारी सतगुरे अपने, नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभु जपने।

त्याग जपो हरनाम सिमर सिमर सिमर सुख पावो आप जपो अवरह नाम जपावो भगत पाए तरिय संसार बिन भगति तनो सिशार सर्व कल्याण सुख नित नाम बूढ़ जात पाए विश्राम सगल दुख काओ वतनास नानक नाम जपो गुणतास

जनको गोविन पहुंचनार। सिर उपर ठाडा गुरसूरा नानक ताके कार्ज पूरा, मत पूरी अमृत जाकी दृष्ट दर्शन पेख दूदर श्रेष्ठ चरण कमल जाके अनु, सबल दर्शन सुंदर हर रूप।

जीवन मुक्ति सिर रे भगवंत धन धन धन जन आया जिस प्रसाद सब जगत आया जन आपन काए सुहाओ जन के संगत आवे नाओ आप मुक्त मुक्त करे संसार नानक तिस जन को सदा नमस्कार श्लोक

पुरुष निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजुनी सहपंगुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच ऐ पी सच नानक होसी पी सच सोचै सोच न होवै जे सोची लखवार चुपै चुप न होवै जे लाए रहा लिवतार भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया भार सहस सियाणपा लख हो है ता इक न चलै नाल केव सचियारा होइए कव कूड़ै तुटै पाल हुकम रजाई चलना नानक लिखिया नाल हुक्मे होवन आकार हुक्म न कहे आ जाई हुक्मे होवन जी हुक्म लै वड़े आई

एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसरना जाई तीर्थ नावा जित भावा मिण पाने के नाई करी जेती सिरठ उपाई वेखा मिण करमा के मिलाए लई मत विच रतन जवाहर माणिक जेक गुर की सिख सुने गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसरना जाई

सकल पवन के स्वद मन्ना मह चट्टाना खाए मन्ना जम कै साथ न जाए ऐसा नाम निरंजन होए देखो मन जाने मन कोए मन मार्ग ठाक न पाए मन पशुओं प्रकट जाए मन मग न चले पंथ मन धर्म सत्य संबंध ऐसा नाम निरंजन होए देखो मन जाने मन कोए मन पाम मुख द्वार मन परवार ऐसा रार मन तर तर गुरु सिख मन नानक पवह न भिख ऐसा नाम निरंजन होए देखो मन जाने मन कोए

असंख जाप असंख भाव असंख पूजा असंख तप ताव असंग रनमुख वेद पाठ असंग जोग मन रह उदास असंग भगत गुण ज्ञान विचार असंग सती असंग दातार असंग सुरम पाखसार असंग मन लाए तार कुदर

दूत भावे साई परिकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख नाम असंख था अगम अगम असंख लो, असंख सिर पार होए, अखरी नाम अखरी साला अखरी ज्ञान गीत गुण गाह, अखरे लिखण बोलण बाण अखरा सिर संजोग वखाण, जिन ए लिखे ते सिर नाहे जे फरमाए तिव तिव पाए।

साहिब जीओ एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्री वाहेगुरु जी की फतेह। जाप श्री मुखवाक पातशाही दसवीं छपे छंद त्वे प्रसाद चक्र चिहन अरबरन जातर पात नहन जे रूप रंग रे पे को कह ना सकत कह हचाल मूर्तियन भाव प्रकाश संतोष कह जय कोट इंद्र इंद्रान शाह शान गणे जय त्रै पवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन त्रण कहत तब सर्व नाम कथे कवन कर्म नाम वर्णत सुमत भुजंग प्रजा छंद नमस्तम काले नमस्तम कृपाले नमस्तम रूपे नमस्तम रूपे नमस्तम भेखे नमस्तम लेखे नमस्तम काय नमस्तम जाय नमस्तम गंजे नमस्तम भंजे नमस्तम नामे नमस्तम ठामे नमस्त कर्म नमस्त धर्म नमस्त नाम नमस्त धाम नमस्त जीते नमस्त पीते नमस्त बाहे नमस्त डाये नमस्त नीले नमस्त नादे नमस्त छेदे नमस्त गादे नमस्त गंजे नमस्त पंजे नमस्त उदारे नमस्त पारे नमस्त सुके नमस्त नेके नमस्त भूते नमस्त जुपे नमस्त करमे नमस्त निवरमे नमस्त निर्देशे नमस्त निपेशे नमस्त निनामे नमस्त निरकामे नमस्त निर्धाते नमस्त निर्गाते नमस्त निर्दूते नमस्त भूते नमस्त लोके नमस्त शोके नमस्त नृतापे नमस्त थापे नमस्त त्रमाने नमस्त निधाने नमस्त गाहे नमस्त वाहे नमस्त त्रिवर्गे नमस्त सर्गे नमस्त प्रभोगे नमस्त संयोगे नमस्त रंगे नमस्त बंगे नमस्त गम्मे नमस्त सतरमे नमस्त जलाश्रे नमस्त नरश्रे नमस्त जाते नमस्त पाते नमस्त अजवे नमस्त सत अजवे आदेश संदेश नमस्त पेसे नमस्त रामे नमस्त रामे नमो सर काले नमो सर दयाले नमो सर रूपे नमो सर भूपे नमो सर खापे नमो सर थापे नमो सर काले नमो सर पाले नमस्त।

आप रूप में कान उस्तदेक पुरखवदूत करो गंजन सर्व भंजन आदि रूप सूत अंगहीन भंगनाथ में एक पुरख पार सर्व लायक सर्व कायक सर्व गोपृत पार सर्व गंता सर्व हंता सर्व ते अनपेख सर्व शास्त्र न जाने जय रूप रंग रेख परम वेद प्राण जाके नेत भक्त नित कोट सुन प्राण शास्त्र ना भी बोचत मद पार संत वह प्रसाद

इंद्रान इंद्रगलान बाल कान रंग कलान कालान भूदंग अंगद मित पार गुण गण उधार मुन गण प्रणाम निर्भय निकाम प्रचंड मित गत खंड कर्म आदर्श्य धर्म शर्मा पन्नाड्यान बाडिय चाची छंद प्रसाद गोबिंदे मुकंदे उदारे अपारे अर्यं करियन निर्नामे अकामे भुजंग प्रजा छंद चतर चक्र करता चतर चक्र हरता चतर चक्र दाने चतर चक्र जाने चतर चक्र भरती चतर चक्र भरती चतर चक्र पाले चतर चक्र काले चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे चतर चक्र मानिए चतर चक्र दानिए चाची छंद

जी रहने के राज करी में के कर्म करी में के सर्वम कलिये के सर्वम धलिये के सर्वत्र मानिये के सर्वत्र दानिये के सर्वत्र गौण है के सर्वत्र पौण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र भेष है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र साज है के सर्वत्र दीन है के सर्वत्र लीने के सर्व के सर्वत्र लीने के सर्वत्र जाहो के सर्वत्र बाहो के सर्वत्र देश है के सर्वत्र भेष है के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल है के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र भेखी के सर्वत्र भेखी के सर्वत्र काज है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र भुख है के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र भेष है के सर्वत्र मानिए से प्रधानिये के सर्वत्र जापिये के सर्वत्र थापिये के सर्वत्र पाने के सर्वत्र मानने के सर्वत्र इंद्र के सर्वत्र चंद्र के सर्वं कल्ली में के परम फहीमे के अकल अलामे के

करता करते हैं मृता मृता है अमृता मृत है कर्ण कृत है कृत कृत है धरणी तृत है हम तेसर है परमेश्वर है कृत कृत है मृता मृत है अजब कृत है मृत है नरनायक है खलकायक है।

चलेंगे। वीर पार बड़े वरियावर चार सार की धार पछैया तोरत देश मलिंद मवासन मातिक जान के मान मातिक जान के मान मलैया गाड़े ग्राण के तोड़ नार सुबात नहीं चक चार लवैया साहिब श्री सा को सुन्ना एक जाचक नेक सो एक दवैया दान देव नंदन सचर

सचि पत अंतम से जम पास पेंगे जे नर श्री पद के परसे भक्ते नर फेर न दे तरेंगे का प्यो जो दो लोजन मूंद के बैठ रहे हो भक्तान लगायो नाथ प्रियो सा समुद्रन लोग गयो पर लोग गुआयो वास कियो विखे आंस बैठ के ऐसे ऐसो वैस बतायो साच कहो सुन लियो।

सेवनाओ दो ही कुदरत सा जेकर आसन डिठो चाओ दाता करता है अपने कुछ देवे करे बसाओ तू जानो ही सब सह दिल ऐसे जिन कवाओ कर आसन डिठो चाओ कर आसन डिठो।

कड़ी सभी गोपियों पैर कर गोपाल गहने पावन पानी में संतर चंद सुरजता सगली धरती माल तन वर्त सुन जा नानक मुझसे ज्ञान बिहूनी खाए गया जमकान महला पहला।

पौड़ी सच्चा साहेब एक तो दिन सचो सच वर्ताया जिस तू दे तिस मिले सच जिस तू दे तिस मिले सच तिनी सच कमाया सतगुरु मिले सच पाया जिनके हृदय सच बसाया मूर्ख सच ना जानी।

सच ता पर जानी जरे ते सच्चा होए कूड़ की मल तेरे तन करे हछत होए सच ता पर जानी जा सच तरे प्यार लाओ सुन मर रहे सीता पाए मोक्तवार सच ता पर जानी।

0: बलिहारी कुदरत वसिया तेरा अंतर जाई रखिया रहा हो। जात में जो जोत में जाता कलकला पार पूर रहा, तू सच्चा साहब शिवसा लो जिन की ती सो पार पाया। कहो नानक करते किया बाता, जो किच करना सो कर रहे महला दूजा।
1: जोग शब्दम ज्ञान शब्दम वेद शब्दम ब्राह्मण है, खत्री शब्दम सूर शब्दम शूद्र शब्दम प्राकृत है, सर्व शब्दम एक शब्दम जे को जाने पे हो। नानकता का दास है सोई निरंजन देव महला दूजा।
2: एक कृष्ण सर्व देवा देव द्वात आत्मा आत्मा वास देव जे को जाने पे हो। नानकता का दास है सोई निरंजन।

पाठ पुस्तक संध्या बादक से मूल सबक समाधन मुख चूट पे पुकल सारंग तय पाल तिहाल बेचार गल माला तिलक ले लाटंग दो धोती वस्त्र कपाटंग जय जानस ब्रह्मं कर्मं सब होकर नहीं चो

मूर्ख अंध कोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गल वड हत्या कमाहे असंख पापी पाप कर जाहे असंख कूड़े कूड़े फेराहे असंख मलेश मल पख खाहे असंख निंदक।

असंख नावे असंख तावे अगम अगम असंख लो असंख कह है सिर पार होए अखरी नाम अखरी सालाह अखरी ज्ञान गीत गुणगाह अखरी लिखण बोलण बाण अखरा सिर संजोग बखाण जिन एह लिखे तिस सिर नाहे जे फरमाए तिप ते पाहे जेता कीता तेता नाओ बिन नामै नाही को थाओ।

बिन गुण कीते भगत ना होए स्वस्थ आथ बाणी बरमाओ सत सुहाण सदा मन चाओ कवन सो वेला वक्त कवन

अतः वाह पवह समुंद न जानिए समुंद शाह सुल्तान गिरहा सेती माल तन कीड़ी तुल न होमनी जे तिस मन हो ना विसर है अंत न सिफती कह न अंत अंत न करना देन न अंत अंत न वेखण सुन न अंत

ऊपर ऊंचा नाव ए बड़ ऊंचा होवे कोए तिस ऊंचे कौ जाने सोए जे बड़े आप जाने आप नानक नदरी करमी दात।

सयादेश आद अनिल अनाद अनाहत जोग जोग एको वेश आसन लोए लोए पंडार जो किछ पाया सो एका बार कर कर वेखै सिरजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश दिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जोग जोग एको वेश एक दूजी बहु लखो हे लखो वह लख वीस लख लख गेड़ा आखिय है एक नाम जगदीश इतराहे।

जाए। धर्म खंड का एहो धर्म, ज्ञान खंड का आखो कर्म, केते पवन पाणी बैसंतर, केते कान महेश, केते बरमे कार्द घड़िए है, रूप रंग

करता तेरे सब किछ है, जिस दे सो पावे सदा शिव सला तेरी ना मन वसावे। नाम जिन कै मन वसिया वाजे शब्द कनेरे, कहे नानक सचे साहिब क्या नाही कर तेरा। साचा नाम मेरा आधारू सच नाम उधार मेरा, जिन भुखा सब गवाईया कर सांत सुख मन आए वसिया। जिन इच्छा सब पुजाईया सदा कुरबान कीता गुरु बिटो, जिस दिया वडियाईया कहे नानक सुनो संतो सब धरो पे आरो। साचा नाम मेरा आधारू वाजे पंच शब्द तित कर सुभागे, कर सुभागे शब्द वाजे कला जित कर धारिया। पंच दूत तुद वस कीते काल कंठ कुमारिया, तुर कर्म पाया तुद जिन को से नाम हर कह लागे। कहे नानक तय सुख हुआ तित कर अनहद वाजे, साची लिवे बिन देहन मानी देहन मानी लिवे बाजो। क्या करे विचारिया तुद बाज समरथ कोय नाही, कृपा कर बनवारिया। ये सुनाओ हर थाओ नाही शब्द लाग सवारिया, कहे नानक लिवे बाजों क्या करे विचारिया। आनंद आनंद सब को कहे आनंद गुरु ते जानिया, जानिया आनंद सदा गुर ते कृपा करे प्यारिया। कर कृपा किल विख कटे ज्ञान अंजन सारिया, अंदरों जिनका मोह टुटा तिनका सब सचे सवारिया। कहे नानक हो आनंद है आनंद गुर ते जानिया, बाबा जे तू दे सोई जन पावे। पावे ता सोजन देह जिसन और क्या करे विचारिया, भरम भूले फिरे दह देस एक नाम लाग सवारिया। गुर प्रसादी मन भया निर्मल जिन्ना पाणा पावे, कहे नानक जिस दे प्यारे सोई जन पावे। आवो संत प्यारे हो अकथ की करें कहानी, करें कहानी अकथ केरी कित दुआरे। पाई है तन मन धन सब सौंप गुर को हुक्म मन्या, पाई है हुक्म मन्यो गुरु के रा। गावो सच्ची बाणी कहे नानक सुनो संतो कथियो अकथ कहानी। हे मन चंचला चतुराई किने ना पाया, चतुराई ना पाया किने तू सुन मन मेरे। आ ए माया मोहनी जिने त परम भुलाया, माया ता मोहनी तिने कीती जिन ठगौली पाईया। कुरबान कीता तिस विटो जिन मोह मीठा लाया, कहे नानक मन चंचल चतुराई किने ना पाया। ए मन प्यारिया तू सदा सच संभाले, एहो कटंब तू जे देखदा चले नाही तेरे नाल, साथ तेरे चले नाही तिस नाल क्यों चित लाइए। ऐसा काम मूले ना कीचे जित अंत पछोताई।

तदा सच समाले अगमे अगोचरा तेरा अंत ना पाया, अंतु ना पाया किने तेरा अपना आप तू जाने। जी जनता सब खेल तेरा क्या को आख बखाने, आखे ता वेख सब तू है जन जगते उपा।

हर हर त्याहे आऊं। करमी सहज नाय उपजै विण सहजै सहसा ना जाय। नह जाय सहसा किते संयम रहे कर्म कमाए। सहसे जी उमली न कित संयम धोता जाय। मन धोवो शब्द लागो हर स्यों रहो चित लाए। कहे नान गुर प्रसादी सहज उपजे सहसा विजा।

में आवे बिन सतगुर मुगत ना पाए। फिर मुगत पाए लाग चरणी सतगुरु शब्द सुनाए। कहे नानक विचार देखो बिन सतगुर मुगत ना पाए। आवो सिख सतगुरु के प्यारे हो गावो सच्ची बाणी। बाणी ता गावो गुरु केरी बाणिया सिर बाणी। जिन को नदर करम होवे

गुरमुख किस बुझाय तोड़े बंधन हुवे मुक्त शब्द मन वसाय। गुरमुख जिसनु आप करे सो वह एक सस्यों लिवलाय, कहे नानक आप करता पे हुकुम बुझाय। सिमर शास्त्र पुन पा विचार दे ततै सारण जानी, ततै सारण जानी गुरु बाजो ततै सारण जानी। तेही गुणी संसार भ्रम सुता सुत्या रहन विहानी, गुर कृपा ते से जन जागे जिना हर मन वसिया बोले अमृत बाणी। कहे नानक सो तत पाए जिसनु अण दिन हर लिव लागे जागत रहन विहानी। माता के उदर मैं प्रतपाल करे सो क्यों मनो विसारिये, मनो क्यों वसारिये वड दाता। जी अगन मैं हर पंचावे उसनो कोहे पोहे ना सकी, जिसनो अपनी लिव लावे अपनी लिव आपे लाए। गुरमुख सदा संभाली है कहे नानक वरदाता सो क्यों मनो वसारी है। जैसी अग्न उदर मैं तैसी बार माया, माया अग्न सब एको जेही करता है खेल रचाया। जां तिस भाणा ता जमया परवार भला पाया, लिव छुड़की लगी तृष्णा माया अमरवरताया। माया जित हर विसरे मोह उपजे भाओ दूजा लाया। कहे ना

पाए जगत दिखाया। गुर प्रसादी बुझिया ता चलत हुआ चलत नदरी आया। कहे नानक सृष्टि का मूल रचिया जोत राखी ता तू जग में आया।

हर गाओ मंगल नित सखी है सोग दुख ना व्यापे गुर चरण लागे दिन सुभागे अपना पिर जापे अनहत बाणी गुर शब्द जानी हर नाम हर रस भोगो।

मन ना वसाया गुरु प्रसादी हर मन वसिया पूर्व लिखिया पाया कहे नानक यो शरीर प्रवान हुआ जिन सतगुरु स्यों चित लाया हे नेत्रो मेरे वर तुम मैं जो तरी हर बिन्यवरणा देखो कोई हर बिन्यवरणा देखो कोई नदरी हर निहलिया एहो विस संसार तुम देख दे हो हर का रूप है हर रूप नदरी आया गुर प्रसादी बुझया जा वेखा हर एक हर बिन्यवरणा कोई कहे नानक हे नेत्र अंध से सतगुर मिलै देव दृष्ट होई हे सरवणो मेर हो साच सुनने नो पठाई साच

सच अलख वडाणी ताकी गत कही ना जाय। कहे नानक अमृत नाम सुनो पवित्र हो वह साचे सुनने न उपठाय। हर जियो गुफा।

मन धन द्वारा सेवा सफली करनी चढ़दियां कला बख्शनिया गुरमत अनुसार मनोकामना पूरियां करनिया। छेवें श्री खंड पात साहिब दी सेवा भाई तीर्थ सिंह बीबी हरजिंदर कौर समूह परिवार वालों सच्चे पातशाह जी सिद्धू परिवार वालों आप जी का शुकराना करदिया होया तंदुरुस्तियां वास्ते करवाई गई है। कृपा करनी जी तंदुरुस्तियां चढ़दियां कला बख्शनिया किरत कमाइया विच वाधे पाउणे समूह परिवार दियां गुरमत अनुसार मनोकामना पूरियां करनिया। पातशाह जी परसों रोज तो लैके परिवारां वल्लों लंगरां विच बेअंत तरां

जय पादरो श्री अष्टमी रविवारा तीर्थ तद्रवगन सुधारा सवैय पाएंगे है जबते तुमरे तबते को आंख तेरे नियाने हो राम रहीम पुराण कुरान अनेक है मत एक न माने हो सिमर शास्त्र वे सवे वो भेद के हम एक न जाने हो श्री अस्पा